कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम, कहीं ज्यादा कहीं कम।

आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आज मेरा दूल्हा नहीं कम किसी राजे से, आई बारात बाजे गाजे से, आई बारात बाजे गाजे से।

की मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की बात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी सगन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ूए छुपाए।

जेब जब तक है तेरी भरी, तेरे पहलू में नीलम परी। जेब जिस दिन भी खाली हुई, जान रह जाए।

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराए रे।
1: मोरे कालवा गाड़ी तेज चलाओ रे, चलाओ चलाओ चलाओ रे, काहे पिया घबराओ रे, मोरा काहे पिया घबराओ रे, रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे। हो मोरे कालवा
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा घटा परत जा।

मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा धाम है घटा।